राजे ने शहर विचों बाहर कढ दिता, पर अजामल फिर भी पाप करदा रहा। अजामल पापी जग जाने, सारा संसार अजामल नू जानदा है कि पापी है।

नारायण नारायण करना पुत्र नारायण नारायण परमेश्वर का नाम भी अंत वेले जमदूत आए अजामल जेड़ा सी जमदूता नु देख के ते डर गया पुत्र भुल गया ते कहन लगा नारायण बचा नारायण के मनो जमदूत अट गए देवते आए ता नामदेव जी कहंदे ने ओ अजामल पापी भी बैकुंठ नु चला गया भावे सारी उम्र पाप कीते पर एक वाली नाम ले

थी, सुख के बस्तर दी थी, सेवा की थी, बेनती की थी मां पुरुषानु के मैं बड़ी पापणा, कृपा करो मेरा भी उधार होवे। ता मां पुरुषा ने कहा ये साढ़े कुल तोता है, ये ले ले। अमृत वेले उठ के

पर कृष्ण भगवान ने उस पूतना नू खत्म कर दिता। पर भगवान दे हथों मर के उदा भी उदार हो गया। भगत जी बयान करदे ने, बाल कातनी कपटे भरी ओ पूतना कपट दी भरी होई आई मारन वास्ते कृष्ण भगवान नू। कृष्ण भगवान ने सगा

इंद्र जेड़ा सी मन विच कुड़दा होया वापस इंद्रपुरी चला गया। गौतम ऋषि दा व्याह अहल्या नाल होया, ए अपने टिकाने वापस आ गए। जीवन सुखां दा बतीत होण लग पिया, पर इंद्र मन विच कुड़दा रहा ते सोचदा रहा किसे ना किसे तरीके अहल्या नूं मैं प्राप्त करना है। इसे करके गुरु साहिबां ने कहा बाणी विच, है भाई एक अकाल पुरख नूं नमस्ते करो, ओनू मत्था टेको, क्योंकि ओदे विच कोई औगण नहीं।

इंद्र देवता अपनी सभा लाके बैठे, कुछ सोच रहे है। ता लिखे है कि इंद्र नु चिंता विच पिया देख के चंद्रमा भी कोल बैठा सी। चंद्रमा कहन लगा, इंद्र

केसी कंस मथिन जिनकी है, केसी कंस मथन जिनकी है। भगत नामदेव जी बयान करते हैं, कंस कृष्ण भगवान का मामा सी पर बड़ा जुलमी सी। कंस ने अपने पिता उग्रसैन नु कैद किया होया सी, आप राज कर रहा सी और जुलम कर रहा सी। और कंस ने ही कृष्ण भगवान नु मारन दे कई यतन कीते, पर कृष्ण भगवान ने कंस नु मारिया। कंस मरिया, पापी दा नाश होया। मथुरा दे लोकां ने खुशियां मनाईया कि कृष्ण भगवान ने इस पापी तों साडा खेड़ा छुड़ाया। पर कंस मरिया, मर के मुक्त हो गया, क्योंकि कृष्ण भगवान दे हथों मरिया सी। इस करके कंस पापी दा भी

प्यारे गुरुदेव सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, अपने इस पावन पवित्र शब्द दे विच पैरो महला पहला दा शब्द है जो विचार पेश कर रहे हैं, अंधले क्या पाया जग आए। इस पंक्ति तो यह सिद्ध हुंदा है कि इंसान ने इस जन्म दे विच आके कोई खास वस्तु प्राप्त करनी सी, कोई बहुत उचेची चीज इसने हासिल करनी सी। सिर्फ वो इसका मिशन सी, इसका पर्पस। अंदले क्या पाया जग आए, पाप के इथे आके कुछ पाना सी। महाराज जी ने पूछिए, सच्चे पातशाह वो वस्तु जो असी पानी सी, वो किथे है? जो असी पानी सी वो वस्तु है किथे? तो गुरु साहब उसका जवाब देते हैं, कहते हैं

सोचो नाल नाल। इस करके इस कीर्तन में आहिस्ता आहिस्ता करांगे ताकि सिंह रिफ्लेक्ट कर सकिए, अपने ते सवाल उठा सकिए, जाग सकिए, ते अपने अपने जीवन होर किसे दे नूं नहीं, अपने अपने जीवन नूं ये पूछ सकिए कि मैं आके की पाया है, मैं की पाया है, अते पौन वाली वस्तु अंदर सी, उस अंदर वाली वस्तु नूं मैं पाया है जां नहीं पाया। जे नहीं पाया तो फिर हाले तक का जीवन मेरा वो वेस्ट गया है। महाराज जी आखते हैं भई तुहाडे अपने ही अंदर वस्तु सी, दूरों कितों लभण नहीं सी जाना, घरों बाहर जाने की भी जरूरत नहीं सी क्योंकि वो तुहाडे अपने अंदर है। अते उस अपने अंदर वाली वस्तु नूं तुसी पा नहीं सके फिर माण कड़ी गल का करते, तुहानूं अपने आप से किस गल का माण है। और दूसरी गल, अपने आप नूं तुसी स्याणे किवें समझदे हो? देखो अपने अंदरों ही एक ट्रेजर सी, वह तुसी पाया नहीं, और उसके बावजूद भी अपने आप नूं तुसी स्याणे भी समझदे हो तो फिर माण पड़ी पता नहीं किस गल का करी बैठे हो। यह तो बहुत ही एक शर्मसारी वाली गल है कि साडे अंदर कोई अमलीक खजाना है, असी उसनू ही नहीं देख सके, उसनू ही नहीं पा सके, पाया कुछ भी नहीं, तो माण इतना वड्डा माण नाल असी भरे पए हैं, पता नहीं सी की पा लिया है। पता नहीं सी की पा लिया है। गुरु बाबा जी हुण शब्द उचारदे कहिंदे हन ऐ भोलीए इंसान नूं आख्या है, भोलीए जिंदड़ीए तू किहड़ी गल दा माण करदी है, किस गल दा माण करदी है? कहिंदे हन

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी उसका पता भी नहीं लगा, उसने पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गलबात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गलबात दे विच वो थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि ये की हो गया साढ़े नाल, असी कुछ पाण आए सी, और साढ़े अपने ही पास सी, साढ़े अपने ही अंदर सी, असी उसनू पाया नहीं है, फिर असी केड़ी गल दा माण करिए। कहिंदे हन

तेरे अपने घर दे विच इतना रंग है, इतना स्वाद है, इतना टेस्ट है, इतनी खुमारी है, इतना सुरूर है, इतनी जॉय है। कहंदे हन की ना माने उसनु, तू मान क्यों नहीं लेंदी, थोड़ा जा यत्न क्यों नहीं कर दी कि तू अपने अंदरली जो दुनिया है कि उसनु भी मान के देख। अपने घर हर रंगो, तेरा अपना घर कहंदे हन, बाहरों तेरी जिंदगी जो है वो बड़ी उदास है, बेचैन है, दुखी है, पर तेनू पता नहीं तेरा अपना घर अपना अंदर एक रंगीन दुनिया दे नाल भरिया पिया है। कहंदे हन कोशिश करके, मेहनत करके, हंबला मार के उस अपने अंदरले जगत नू क्यों नहीं मान लेंदी। अगे आखदे हन कहंदे

कहते कमलिए बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम भुलाए। जिहड़ा बाहर टोल रहा है वो परम दे विच भुलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सतगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ए अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आता है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल का इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पिया है। सुते पे बंदे नूं जो मर्जी आखी जाए उसते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उसते कोई असर नहीं हुंदा, उसमें पता ही नहीं लग गया की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनों कुछ किया जाए तो उसनों भी पता नहीं चल रहा, तो बेहोश है। या कोई इंसान कोमा च होवे तो उसनों भी कोई पता नहीं चल रहा कि क्या गया है। असी किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असी अवेकंड हां, जाग रहे हैं, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हैं, तो फिर की सानू एक गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं ले आएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी? कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती एक कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, असी फिर भी आराम ना बैठे रहिए। वो तो वह गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सारियां जान लिया सुन लिया फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना होई, जिंदगी उसे तरह की ही रही कि असि अजिहे लोग हां। गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत यह आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स कि इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी वो पाया है या नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु कित्थे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तुहाडे अपने अंदर है।

गुरु अर्जन देव जी का मैं शब्द सुनाने लगा सी कि उन्होंने पाया है। हुण इस शब्द नूं तुहाडे सामने एक एग्जाम्पल वजो रखण दा मेरा मतलब यह है कि यही स्टेट ऑफ माइंड गुरु अर्जन देव जी चाहते हैं, गुरु नानक देव जी चाहते हैं कि असी अचीव करिए, यही स्टेट ऑफ माइंड। तो ओ सुनो, कहते हैं पाया लाल रतन मन पाया, तन शीतल मन शीतल थिया, सतगुर शब्द समाया। मेरा मन भी शांत ठंडा, तन भी शांत ठंडा। हुण बंदा कहे तन दे शांत का मतलब की है? एयर कंडीशन लगा के तन नूं ठंडा किया है? नहीं, तन दे विच जड़ियां अग्गां बलदियां हन, तन दे विच कई किस्म दियां भुखां दियां अग्गां बल रहियां हन, डिजायर्स दियां अग्गां बल रहियां हन, कहिंदे उह शांत हो गईआं हन। हुण तन सताउंदा नहीं है, तन परेशान नहीं करदा है, ऑल द क्रेविंग्स हैव सीज्ड, तन बिल्कुल आराम च है। तन शीतल मन शीतल थिया, सतगुर शब्द समाया। सतगुरु दे शब्द दे विच मैं कहिंदे समा गया हां, एकमिक हो गया। फिर कहिंदे हन लाथी भूख त्रिशन सब लाथी। वो कैसी स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच लाथी भूख सब भुख लिख गई है, त्रिशन सब लाथी, चिंता सगल विसारी, कोई चिंता नहीं रह गई। वाह, कितनी वंडरफुल स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिथे कोई चिंता नहीं रह गई। चिंता सगल विसारी, कर मस्तक गुर पूरे धरियो, मन जीतो जग सारी। गुर पूरे ने मेरे सिर उत्ते हथ रखिया है ते मैं अपने मन नूं जित लिया है। मन नूं जितन दे नाल कहिंदे सारा जगत ही जितया जांदा है। मन जीतो जग सारी। तृप्त अघाय रहे रिद अंतर, कहिंदे तृप्त अघाय रहे रिद अंतर, रिद अपने हिरदे दे अंदर रहना हां, डोलन ते अब चूके, कहिंदे हुण डोलना खत्म हो गया है। अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नाही रे मूके, कहिंदे ओ खजाना अंदरों मिलिया है जिस दे विच कदे तोट आ ही नहीं सकी। अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नाही रे मूके। ओ अवस्था है, ए अवस्था है जिहड़ी गुरु बाबा जी सानू चाहुंदे हन कि असां अपने ऐस जीवन च पा के जानी सी। ताई ते कहा कि तुसी पाया की है, अंदले क्या पाया जागा, अपने अंदरों ये प्राप्त होनी सी। सो असी अज दे इस कीर्तन दे विच जो कुछ सुनिया है इस उत्ते रिफ्लैक्ट करना है कि सचमुच असी अपने जीवन दे विच अपनी अंदरली दुनिया दे विचों कुछ पा के जा रहे हैं जां हाले तक खाली ही बैठे, जां खाली ही बैठे हैं। और वह है सब कुछ इस काया दे विच ही। तां दास ने काया दे उत्ते कीर्तन शुरू कीते सी, तन दे उत्ते, बॉडी दे उत्ते, कि सानू पता लगे कि गुरु महाराज जी ने साडी बॉडी दे मुतलक, इस काया दे मुतलक, इस देही दे मुतलक की कुछ आख्या है। आप जी नूं मैं तीन नुक्ते सुना चुका हां। नंबर एक, दुर्लभ है एक काया, क्योंकि इस काया दे अंदर ही वो दुर्लभ वस्तु है जो असी पाउणी है। दूसरा, एक काया मंदिर है, अकाल पुरख वाहिगुरु इस दे अंदर निवास करता है। तीसरा, एक काया रब दी पत्नी है। ज्यो ज्यो इसनू अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर लै जाओगे, पत्नी का जीवन घुमला जाएगा, बीमार हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, उदास हो जाएगी। अज एक चौथा नुक्ता आप जी के सामने रखता हां। गुरु महाराज जी आखते हैं कि जो कुछ सारे ब्रह्मंड दे विच है वह सारे का सारा इस काया के अंदर

कितना स्पष्ट किया है कि वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई कोई उसको खोजने की कोशिश करे। इम्पॉसिबल नहीं है, जो खोजे सो पावे, वो जरूर पाएगा जो खोज करनी शुरू करेगा। कहते ओ शक्ति, ओ महान मिस्टीरियस वस्तु जो सारे जगत की रचना रचती है, बनाती है, सवार दी है, शिंगार दी है, प्रतिपाल दी है, सबना दे अंदर जीवन जो भरती है। कहते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु की होंद, ओ अकाल पुरख जो सारे खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है, उतना ही उतना जितना सारे जगत मौजूद है इस देही दे अंदर मौजूद है। जो खोज है सो पावे, जो उसनु खोजन की कोशिश करेगा वो उसनु अवश्य पा लेगा। चौथा नुक्ता यह है, वो उसनु प्राप्त कर लेगा। हुण असी यह देखना है कि असी इस बॉडी दे विचों की खोजया है, की लभ्या है, की पाया है। पंजवां नुक्ता, गुरु महाराज जी आखदे हन ये जिहड़ी देही है ये घोड़ी है, भाव कि ये वहीकल है, अते इस देही दे द्वारा ही, इस ह्यूमन फॉर्म दे द्वारा ही तुसी उस पॉइंट तक पहुंचना है जिथे वो ट्रेजर है। जे ये देही ना होवे, ह्यूमन फॉर्म ना होवे, तो तुसी वो वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस तक पहुंचन दे वास्ते इस देही ने ही तुहाडी हेल्प करनी है। इस तो तुसी कम लेना है। कहिंदे हन एक घोड़ी है, इस उत्ते तुसी ट्रैवल करना है, तुसी इस दे मास्टर हो, तुसी इस दे ड्राइवर हो, तुसी इस दे संचालक हो, तुसी इसनु चलाण वाले हो, अते इस दी लगाम तुहाडे हथ विच होनी चाहीदी है। पर ऐसा ते नहीं है, ऐसा नहीं है। कई दफा जो नहीं बोलना चाहुंदे, जो नहीं बोलना चाहीदा, वो असी बोल जाने हां। वो फिर क्यों बोल हुंदा है? जो नहीं करना चाहिदा वो असी कर जाने हैं, तो जो करना चाहिदा है वो असी नहीं करते। तो असी देही दे मास्टर नहीं हां कि असी इसनु अपनी मर्जी दे नाल जो वर्तीए, असी इस इंस्ट्रूमेंट दे गुलाम बन गए हां, सेंसेस दे गुलाम बन गए हां। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध कर कल दे कीर्तन च आखी से पंक्ति कि इस दिया इंद्रियां बलशाली हैं, हुण ओ धोई फिर दिया हैं, ओ खिची फिर दिया हैं सानू। ओ गल हो गई है कि सवार नू हुण घोड़ी खिची फिर दी, धोई फिर दी। ओ सवार दा हाल तुसी देख लो की होएगा। घोड़ी किसी दे पास होवे, उस उत्ते सवार हो जाए, फिर उसनू ये ना पता चले कि घोड़ी ने हुण उसनू किधर लैके जाना है। वो उसको रोकना चाहे वो रुके ना, तो किसे खड्डे च डिग के ही मरेगा। गुरु बाबा जी आखदे हन इसनू अपने कंट्रोल दे अंदर ले आओ, इस दे मास्टर बनो, तो इसनू उस पासे वल जान नू वरतो जिस पासे वल जान नू तुहानू हदायत कीती जांदी है। उस ट्रेजर लैंड नू जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, जिथे खजाना है वो तुहाडे अपने ही अंदर है। कहिंदे हन इस देही दे विच ही है, इस देही तो बिना उसनू पाया नहीं जा सकता। सो इस देही नू विगड़न ना दिओ कदे, इस दे स्वभाव विगड़न ना दिओ, इस दी आदतां विगड़न ना दिओ, इस दी एनर्जी नू वेस्ट ना करो, इसनू गलत आदतां ना पाओ, क्योंकि यह तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन। अगला नुक्ता गुरु बाबा जी आखदे हन कि ए जो देही है, छेवां नुक्ता, सब तमाम जूना तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है। आप जी ने एक पंक्ति सुनाना आज गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों, महाराज जी ने लिखिया है, बहुत ध्यान नाल सुनना। सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। ते हुण मेरी अर्ज है कि यूएसए दे विच जां होर जिथे भी कीर्तन का मौका मैनू मिलिया है, कोई खास पंक्ति हुंदी है तो मैं वो सारी संगत नू बुलाना हुंदा, सारी संगत उसनू बोले, ताकि दो चार दफा बोलन नाल वो पंक्ति याद भी हो जांदी, क्योंकि वो बहुत ही एक खास पंक्ति हुंदी है। तो आप जी दास तो बाद अद्धी तुक मैं पहला बोलांगा, फिर मेरे कहन तो बाद आप सारे बोले, तो ए पंक्ति आप नू याद हो जाएगी। सब माया मोह
ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮਸ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ, ਮਮਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਠੱਗੀ ਇਤਆਦ, ਵੈਰ, ਮੇਰ, ਤੇਰ, ਆਪਣਾ, ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਮਤਾ, ਮੋਹ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜੋ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸ ਹਨ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आने वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू भी मौत नूं दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहां ने हाथ जोड़े ओ मेरा दे साई आप कृपा करो आप दसो मौत नूं कितनी को नेड़े समझते हो। तां धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

बहु परपंच कर परधन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेडी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पैरे। एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग ता लैन दियो, आ मैनू 24 घंटे दे दियो, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ श्वास उस दे बदले दे दियो। तां जमदूता ने कहा ए श्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होण लगे। तां कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू 1 श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे, मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते। क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई, जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह

गुरु नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया न भाई पही प्राप्त मानस दे होरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी परिया ए प्राप्त होए हन तेनू अमोलक श्वास ते जितने तक दुनिया विच तू रह रहे है पले पुरशा पासों कोई चंगी गल सुन पले बन ते जे आप बोलना चाहुंदा है तो परमेश्वर दी भक्ति कर ओदा कीर्तन कर ओदा जस कर ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जावेगा इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक किस सुनिए चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए मिथत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत जिनानू ए चंगे गुण प्राप्त हन भई उना दा संसार ते आउना सफल सफल हो जावेगा गुरु नानक सच्चे पातशाह।

0: धर्म दृढ़तां जागृति देम चरना सद्रदानी दानी तुम दानी तालल तुम चरना सद्रदानी दानी तुम दानी तालल तुम चरना
1: तक तक तक तक धली कर धली कर तक धली कर तक त्राम किरता किरता तक तक तक धली कर तक धम किरता कर धली कर धा चरना चरना चरना सद्रदानी दानी तुम दानी तालल तुम चरना दानी दानी तुम दानी तालल तुम चरना
0: तद्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम जरना
1: संगीत भुजंग प्रयाग छंद जागर दंग नागर दंग बागर दंग बाजे गागर दंग गाजे महा गाजे गाजे कागर दंग तीरंग तुकंग कड़ाकंग कागर दंग काती कटारी कड़ाकंग दिरना दिरना दिरना तद्र दानी

कवि केंद्र सुजान चंद मैं कवि हूं। हिंदुस्तान ते राज है औरंगजेब बादशाह जिसने ऐलान किया है

से बादशाह का घर नहीं और वो थान है आनंदपुर साहब आपको सदनाम जिसे कलगियां वाला बादशाह है। तो मैं भी सुने वो कवियां का बड़ा मान करके सुने उन्ना बवंजा कवि रखे हैं सुजान चंद मैं तेरा दोस्त।

फिर कहने रहा महाराज मेरे मन में चैन है। तो संत गुरु जी फिर कहते हैं तेनू आख्या भज जा

प्यासा पर हाली भी दौड़ता जा रहे हैं, क्यों? क्यों मेरे गुरु ने किया है सुजान चंद दौड़ जा, ये दौड़ता पे है कितने रुकना।

बड़ी सेवा करता है, पता नहीं कितना आए, बोलता काटा है, सिमरन करता रहता है, पता नहीं कौन है।

चल मेरे यार, और तो दवाई दे फिर सुजान चल सोच जे माई ना जाव तो फिर दर्शन नहीं हो अगे बड़ा तरस है पता नहीं और कितना तरस ना होगा संगत एक लंघदियां ने दर्शन करन जांदियां ने ते जदों दर्शन करके आंदियां ने

कि अज यह समा आ गया, अज सानू चल के तेरे को आना पे हर को सदा सुजान चाहिए तेरी सेवा के बदले।

भगत कबीर जी परमात्मा नूं मिलन दा एक बड़ा सुचज्जा ते सुंदर रस्ता दसदे ने। कहंदे ने हे भाई जे रब नूं मिलना ते हउमै दा त्याग

अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहिन चंदन सुगंध ग्रह सोहिन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे।

कोई अल्लाह आख लवे, कोई वाहेगुरु आख लवे, कोई राम राम आखी जावे, सब उस प्रभु दे नाम ने। सतगुरां ने बाणी विच उस प्रभु नूं किन्ने नामां नाल पुकारिया है। रब एक है, प्रभु परमात्मा एक है, ते ए दुनिया बखरे बखरे नामां नाल पुकारदी है। किस भी नाम नाल पुकार लवो, बस जेड़ा भी उसका नाम लवेगा वो तर जाएगा। देवा पाहिन तारी ले, राम कहत जन कछ ना करे। कोई हो जाया नहीं जिन्हें प्रभु दा नाम लिया होवे ते ना तरिया होवे। जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन सतगुरु किड़ियां बख्शां कर रहे हैं, नाम दी वड्याई कर रहे हैं।

पुत्र ने जन्म लिया है ते पुत्र जन्म तो ही पिंगला है, हाथां ते पैरां तो हीण है, समा बीतिया मां गुजर गई, होर समा बीतिया ते इसदा पिता भी गुजर गया। सारे लोग आखन लगे भी ये बच्चा बड़ा ही कर्महीन है, हर कोई नफरत करन लगा। भैण भरा रिश्तेदार सारे बोल कबोल बोलते जदों का तू जन्म लिया है ते घर विच घाटा ही घाटा है, तुर नहीं सकदा, हथां ना कुछ कर नहीं सकदा, कोई तेनू किन्ना चिर खवावेगा। रोज बोल कबोल बोलते ने तू बड़ा ही कर्महीन है। अज इस बच्चे को सुनिया ना गया, हर रोज दियां गल्लां सुन के अज तंग आया, आखन लगा मैं तुहाडा दिता नहीं खांदा। ओ प्रभु परमात्मा जिहड़ा सारी सृष्टि नूं चलाउंदा है, मैं बाहर

दिन बीतया रात बीती फिर दिन आया, उस मालक दी बख्शिश होई। आज इस जंगल दे विचों ब्रह्मा दे पुत्र श्री नारद जी लंघ रहे ने। अचानक बच्चे वल निगाह पई, आखण लगे ओए बच्चिया इना उदास ते नाराज क्यों बैठा है? प्रभु दा नाम जपया कर, प्रभु दा नाम जपण दे नाल सारे दुख ते भुखां दूर हो जांदे ने। राम राम जपया कर, राम नाम जपण दे नाल संसारी दुख ते भुखां सारियां ही मुक जांदियां ने। अनारद जी इन्नी गल करके तुर गए ने। बच्चे ने कन्ना नाल सुनिया ते हिरदे विच बसा लिया, सिमरन विच जुड़ गया ते की सोझी मिलती है? किन्ने ही महीने उस प्रभु दे सिमरन विच बैठा रहा, राम राम दी जाग सवासा नाल जुड़ गई। किन्ने महीने बैठा रहा, अज किन्ने महीनिया बाद इस दियां अखां खुलियां ते देखो नाम दियां बरकतां की तक रहा है। इस दे हाथ ते पैर ठीक हो गए, हुण के पिंगला नहीं दे रहा। अज जदों इसने कुछ तकिया है, प्रभु तू किड्डा दयालु है, तू किड्डा कृपालु है। सुनिया सी तू रहमतां दा मुजस्मा है, अज ते तेरियां बख्शां, अज ते तेरे

जिदे पले नाम है दुनिया दे सुख ओदे मगर मगर तुरे फिरदे ने। सतगुरु बाणी विच आख रहे ने लोक पर लोक दे सुख ओदे मगर तुर पैंदे ने। जिहड़ा हिरदे विच नाम वसाउंदा है अज की होया राजा बिरद होया ते ए जवान होया राजे ने इस बच्चे नूं राज गद्दी ते बिठा दिता है। जिहड़ी दुनिया सारी इस दे नाल नफरत करदी सी पिंड नगरी वाले भैण भरा जिहड़े एडे धक्के मारदे सन अज सारे इस नूं इक बार मिलण दी खातर दरवाजे ते खलोते तरले कर रहे ने। जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत ओ चौं कुंड माने। एवें ने बाबा जी ने बाणी विच आख्या। नाम विच पाबरियां ही एडियां ने

बेसवाद है। महापुरुष बाहर खलोते, बरसात हो रही है, सर्दी दी रुत है, कंब रहे नी, ते गनका नी दरवाजा खोलिया, बाबा जी अंदर लांघ आओ, अंदर लांघ आओ। महापुरुष दरवाजे विच खलोते नी, नस के अंदर गई, सतपुरख आए ने सेवा कर लवा, नस के गई ते दूध दा गलास लेके आई, बाबा जी शक लवो। महापुरुष आखन लगे, बच्ची तेरा काम की है, की किरत कर दी है? बाबा जी मेरा धंधा बहुत माड़ा है, मैं कर्मां दी मारी बेसवा। आखन लगे, बच्ची आ तेरे हत्थां दा दुध असां ने नहीं पीना। इन्नी गल आखी ते गनका दे अखां विचों हंजू आए, क्यों नहीं पीना, तेरा कर्म माड़ा है, जे साड़ी एक गल मनेगी ते तां ए दुध दा गलास मैं पीवांगा। महापुरुष दुनिया नू तारन वास्ते आ गए, बाबा जी तुहाडी हर एक गल मनांगी। महापुरुषां दे कोल एक पिंजरे दे

राम बोलेगी ई भी बोलेगा, इनू राम राम सुखाया कर, गल मनेगी। हाथ जोड़ के आखन लगी, बाबा जी इस तोते नू मैं राम राम सुखावा। महापुरशां ने दुध सकिया, हुण महापुरशां दे बचन तोते नू हर रोज राम राम सुखाउंदी है, हर रोज किन्ना चिर राम राम करदी है। ते एक दिन इहो जिहां बख्शां होईयां, राम नाम इहो जिहा इहदे सवासां नाल जुड़िया, तोते दा उधार ते होना ही सी, इहदी रसना ते राम सदा वास्ते वस गया। हर वेले राम राम राम ते इतिहास विचों सोझी मिलदी है, एडी वड्डी पापण ते राम नाम दियां बख्शां गई स्वर्गां। राम नाम ने तार दिता, लोक परलोक सवार दिते, स्वर्गां दे दरवाजे इसलई सदा वास्ते खुल गए। ते ए है प्रभु दे नाम दी महिमा। सतगुरु बाणी विच सोझी दे रहे ने, जप हीन तप हीन कुल हीन कर्म हीन नामे के स्वामी ते उतरे। किड्डा भी गुनाहगार है तू, किड्डा भी पापी है, किड्डा भी कर्महीन है, प्रभु दा नाम जपेगा, राम नाम जपेगा, वाहेगुरु अल्लाह आखे।

परम सरकार शासन एक पवित्र शब्द धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का उच्चारण किया हुआ इस शब्द के विच साहब जी उपदेश करते हैं जैसे एक आग दे चुल्हे दे विच लकड़ा बालिए अग बालिए लकड़ा नू हिलाइए ता अग दे छोटे छोटे चंगियाड़े उतां नू उड़दे हन अग ते इक्को ही है पर चंगियाड़े कितने उड़दे जैसे एक आग दे जिस तरह एक आग तो जैसे एक आग दे कनुका कोट कोट कहंदे ने करोड़ जैसे एक आग दे कनुका कोट आग उठे न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे जिस तरह आग दे विचों आग दे चिंगियाड़े उठते नहीं

के कणों का जिस तरह मिट्टी धरती ते और धरती की मिट्टी ते पैर मारने वो मिट्टी उतान उठती है पर उठ के फिर दोबारा वो मिट्टी दे विच ही मिल

कोट करोड़। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, नदी ते एको ही है, पानी ते एको ही है, पर पानी दिया लहरा करोड़ा उठ दिया, पानी एको ही है पर लहर जद उठ दिए ते असी कह देने हैं नदी विच पानी दी लहर उठी, कह देने हैं लहर उठ दिया पईयां ने, लहर है ते पानी विच है भी पानी, पर एक नाम पै गया पानी दी लहर, पर सासंगत ओ लहर है ता पानी, पानी तो वख नहीं। आखो सतनाम से जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे, जिस तरह नदी विच पानी दियां लहरां उठदियां ने उन्हां पानी दियां लहरां नूं असी पानी ही आखांगे पानी।

मैं सहब जाते आता और माता गुजरी नु दुध पिया के आता ते मोती राम मेहरा दी घर वाली दा एक बारी शरीर कंप गया। वो ते बागी हन हकूमत दे जेड़ा भी उन्हां दी मदद करेगा नवाब उन्हां नु जिंदा नहीं छड़ेगा। मोती राम ने कहा पलिए लोके तैनू पता है साड़ी जात की है, साड़ी जात है मेहरा जीवन ते साड़ी जात नू कदी भी किसे ने मान नहीं दिता, साड़े वर्गियां नू कदी किसे ने अपना रूप नहीं दिता। युगा तो पलिए लोके जिस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साढ़े वर्गे नीवियां नू अपने गल दे नाल लगा के अपना रूप दिता, जे उन्हां दे साहिबजादियां दी सेवा करदे आं जान भी चली जाए ते होर की चाहिदा। आखो सतनाम सेवा। मोती राम कहन लगा पर ये लोग सुन

फिर भी जो तुसी कहोगे मैं गुरु दक्षिणा देंगा, आज्ञा करो मैं की बेटा दे। साध संगत चाहिदा तां इह सी कि द्रोणाचार्य उहदी इह विद्या दे के उहनूं थापड़ा देंदे, उहनूं असीस देंदे, कहिंदे बेटा एकलव तू बड़ा महान है, मैं तेरी विद्या तों बड़ा खुश हां, तेरी चंगी विद्या, तेरी चंगी विद्या ही मेरी दक्षिणा है, मेरी बेटा है। पर नहीं, द्रोणाचार्य गुरु हो गए, किड्डा वड्डा त्रोह, किड्डा वड्डा जुलम कर रहे हैं एकलव दे नाल। कहन लगे एकलव मेरी बेटा, एकलव कहन लगा जो आ गया करो। द्रोणाचार्य अज गुरु हो के किड्डा वड्डा जुलम कीता, कहन लगा एकलव मेरी बेटा ए है, अपना अंगूठा कट के दे दे, अंग सतनाम श्री, अपना अंगूठा कट के दे दे। एकलव ने एक मिंट भी ना लाया, उस वेले छुरे दे नाल अपना अंगूठा कट के द्रोणाचार्य दे

निर्धन को पले निर्धन को पले निर्धन को पले निर्धन को पले हाय हाय निर्धन को पले गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहनी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा दा नाम है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन कीता है केवल बोल के लंघ दे हां आज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैन पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लंघा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संग जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करने वाले नू करदे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सत्संग आज पंजवा निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ए पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवा निर्धन नू पालन दी सेवा लैण सारे कृपा करो।

any number, a circle surrounding you. जिसने ए मंग मंग ली है उसकी यहां सारी मंगा पूरी है और कड़ी मंग नानक को ब्रह्म नया कर सच देव क्योंकि सच सदा रहने वाली है दूर बिखुटे नानका दूर में हो गया पूरे पदार्थ पहले भी नहीं रहे तो इस वास्ते हमें पूर्ण निकुटे नाम का पूर्ण सच और सिर्फ दी अर्थात पातशाह मैं सच्ची वस्तु जरा सच नाल जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा उसके कर्म भी सच्चे जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान में दुनिया सबका आधे रस्ते चंगे रस्ते पे सच्चे मार्ग पे चलने वाला इंसान सच्चे कर्म करने वाले भगवान परमात्मा ने सच्चे मार्ग चल देना उस तत्व करे सच जड़ा सच पे आप बोलते वो दुध पे आप जड़ा झूठ पे आप बोलते हैं वो जहर पे आप सच बोलने जेडा पुण कोई नहीं झूठ बोलने जेडा पाप सच पुराना ना नाम ना दे तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम उस वाहिगुरु का पवित्र नाम नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराऊंगी वो नाम केड़ा है वाहिगुरु वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हमें वाहिगुरु गुरमंत्र है जब हमें उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु जिस तरह अंब का बूटा वह नाम भी अंब और जड़ा उसके उत्ते फल लगा है वह नाम भी अंब और सानू के अंब चाहिए फल तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा नहीं फिर वो राखी करनी पैदी संभाल करनी पै फिर सामू जोड़ा अम फल है वह प्राप्त इसे तरीके उस वाहगुरु की प्राप्ति का साधन ये वाहगुरु शब्द वाहगुरु गुरु मंत्र है जब हम ये गुरु का मंत्र बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज वचन करते सन भाई ये गुरुमंत्र जो वाहिगुरु है ये दरगाही टिकट दुनिया भी सफर करना होने ता भी टिकट की जो टिकट तो बगैर सफर नहीं हो सकता और इसे तरह उस दरगाह जाने वास्ते मालक तक पहुंचने वास्ते सानू टिकट चाहिए एक दिन वस्ती रस्ती दुनिया में छड़ के पुत्र धियां त्याग के किसी लंबे पैदे इंसान ने किसी ने पूछा मारे ऐ धन गुरु अर्जुन देव पातशाह बनाए दसो भाई जिस रस्ते पे एक दिन इंसान भी तुरना है मारा पता दसो कितने वीर उसके पोह किने प्रयाग सब बांबे जाना मीलों का पता
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਭ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ

पुकार किसी को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, शत्रुन को पलनो बद कियो, घट घट के अंतर की जान, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी दे कुंजर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जा

कोई। एक बारा जिनक मैं संभारा, पाल फाते ताए उबारा, जिन नर नाम तिहारो का दारिद दुष्ट दोग तेरा, खड़ग केता मैं शरण तिहारी, पाप आदे लियो उबारी, सर्व ठोर मुँह हो साई, दुष्ट दोग ते लियो बिचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुख रता, केलवेक सगल दे को हरता, दुष्ट दुखियन को छय करता, श्री अस्त हो जा जप हे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तप काला, मन बांछता फल पावे सोई, डूब न से व्यापत कोई अड़ेला, सुने गुण जो याहे सोरस न पावे, सुने मूर्ख तलाए चतुरता आवे, दुख दर्द पहो नित न दिनर के रह, वो जो याकी एक बार चौबई को कह चौबई, संबत सत्रह सहस पुनिजय, अर्ध सहस पुनतीन किजय, भाद्रव सुधी अष्टमी रविवार, तीर सुद्रव ग्रंथ सुधारा, एत श्री चरित्रो पखयामे, त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे, 405 चरित्र समापत, मस्त सुख मस्त अफजू, दोहरा दा जान कर दास पर कीजै कृपा पार, आप दैराख मोए मान क्रम वचन विचार चौबई, मैं न गलेश प्रथम नाऊ, किशन बिशन कमू न त्याऊ, कान सुने पहचान तिनसो, लेव लागी मोरी पग इनसो, महाकाल रखवार मारो, महालो मैं किन कर धारो, अपना जान करो रखबार, बाहे गए की लाज विचार, अपना जान मुझे तत्परी है, चुन चुन शत्र हमारे मरी है, देख तेग जग में गऊ चल, राख आप मोहे और न गल, तुम हम करो सदा प्रतपार, तुम साहेब मैं दास त्यार, ज्ञान अपना मुझे निवाज, आप करो हमारे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा।

जेड़ दा महीना तत्ता तुप तत्ती रेत तत्ती मुगल सरकार तत्ती पर ठंडे कौन हन शांति दे पुंज निमरता दे सागर गंभीरता दे सोमे गुरबाणी दे बोहित गुरमत दे स्कॉलर पंजवे गुरु नानक शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। किसे कवि ने ठीक ही किया है, इना अखा ने कई पतंगियां नू उंज ता लाटां ते सड़दियां देखिया है, मैं कई वेर चुप कीते गुंचियां नू देगां विच वी कढ़दियां देखिया है, तत्ती रेत ते कई नमाजियां नू मैं कलमा यारदा पढ़दियां देखिया है, पर मैं की दसां अर्जन देव ताई किदां अग उत्ते सड़दियां देखिया है। हजरत मियां मीर ईरान दे रहण वाला जो उस वक्त लाहौर विच ही रह रहा सी, जदों उस नू किसे ने जाके दसिया ओए फकरा जाके अपने यार दी हालत ता देख, ता इस सुन के साईं मियां मीर दौड़िया आया, आके की देखदा है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठे हुए हन, सारा शरीर छले छले होया पिया है, पर मस्तक डलका मारिया है ते मुखों की कह रहे हन, तेरा किया मीठा लागे। ए सब कुछ देख के साईं मियां मीर ने गुरु साहिब नू सवाल कीता। मियां मीर ने पुछया सतगुरां नू, तवी तपदी वांग तंदूर दाता और तन भर दिता सारा शालिया ने जिवें वेल ते गुच्छे अंगूर दाता, कोमल कलियां तो कूला रेशमा तो जिसम तड़के होया मनूर दाता, कल तख्त उत्ते ते अज तवी उत्ते एक ही खेल रचाए रब्बी नूर दाता, ते नाल ही हाथ जोड़ के बेनती कीती, महाराज मेरे कोलों ए तसीहे जरे नहीं जांदे, मेनू हुक्म दियो मैं अज ही लाहौर ते दिल्ली दी इट नाल इट खड़का देंगा। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ी धीरता नाल पुछया, साईं जी ए शक्तियां कित्थों प्राप्त कीतियां? तां जवाब मिलिया, जी हजूर कोलों। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, इन्हां शक्तियां नू असी वी तां वरत सकदे सी, पर शक्ति वरतना परमात्मा दे विरुद्ध बगावत करना है। साडे दो निशाने सन, असी इस सृष्टि उपर दो नीहां रखनियां सन। अगों हस के सतगुरु कहन लगे, तू फकरा रमज पछाणी नहीं, मैं तेरे दिल दी जान लई, तू मेरे दिल दी जानी नहीं, मैं रखनिया है सन दो नीहां, एक शहीदी दी एक हरमंदर दी, ओ तू रखती ए मैं रखूं, ए चाह है मेरे अंदर दी।